विश्राम मंदिर तया तनातनो तनोर्मदीष्यं भक्तिरसामृत सिंधुर्भवतु सदायं प्रमोदायं भक्तिरसामृत सिंधुर् चरत परिभूत काल जाल भक्त्या मकरान शीलता मुक्ति नदिका नमस्यामि भक्ति रथ सपस्तुति रखिरौ भगवन मंगल प्रसंगस्यं अज्ञेनापि मया सक्रियते क्रियते सुहृदां प्रमदाहयम् एतस्य भगवद्

वैशिष्ट्यं मह्यं कथयितुं स्फुटं लक्षणं कियति भक्ति रुत्तमाया सतान्वतम् अन्नाभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मार्थनावृतम्।